ये क्या करने लगे हो? तुम तो हद से गुजरने लगे हो। ये मुझे कहाँ ले आए हो? कहाँ का वादा करके तुम कहाँ ले आए हर जाई? तुम्हें तो दिल लगी सूझी, मेरी तो जान पे बनाई। यहाँ से चलो ना, चलो।

अल्लाह तुम बड़े जिद्दी हो, बढ़े जाते हो तुम आगे, बदन शोला सा जलता है, तुम्हारा खेल ठहर और हमारा दम निकलता है। छोड़ो जबरदस्ती के रिश्ते ना जोड़ो,

तारों की बारात हो, सजी सजी रात हो, फूलों की सेज हो, तब ऐसी कोई बात हो, है ना, है ना।

क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? मेरा प्यार तुम्हारे लिए है मगर अभी नहीं। उल्फत का जब मजा है कि दोनों हो।